0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक रशीद।
1: मैं औरंगजेब चौधरी।
2: मैं असलम भुट्टा।
3: मैं जी हुसैन कपूर शेफील्ड से।
4: मेरा नाम इशफाक हुसैन क्यानी है।
5: मेरा नाम अहमद अस्कर है।
6: मैं अरशद खान शेफील्ड से हूं।
7: मेरा नाम अंजुम अफसाद है।
8: मेरा नाम इमराना है। कीप लिसनिंग टू लिंक एफएम 96.7।

0: You're listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusi sun rahe ho Link FM.
2: Mazeer Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naseersolicitors.co.uk. Naseer Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: अस्सलाम वालेकुम, मैं हनीम अजारवी और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
1: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 law solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
2: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
3: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786-786-2585।
5: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
6: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
7: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.

0: Sabe também, give it in the face.
1: जैसा ग्रीस वैसा भेज, दिखे बैठे कंगा, पक्के से निकले कंगा, देख मेरा तम्मा नहीं तो हो जाएगा दंगा, सब तेरा भला चंगा, सम्मा भेक मंगा, कैरोट जाए, टेनी पार्टी सारी दाला फंगा, भाई गरी

0: कल एक संग पेपर ऊपर एक संग एवरीथिंग परफेक्ट अंदर भी ले रहे भाई एक संग
1: कुछ अगर जाएगा तो तीन साल तक होगा वो इन ऑर्डर से तो पांडु भाई का हाथ है लंबा
0: नेता
1: अभिनेता या तो कोई बिल्डर भाई को देखा सुपारी कर पाता है मैं
0: उसका पावर है सब उसका आगे झुकता उसका खोपड़ी सुनक गया तो पूरा मुंबई रुकता एक खत्म नहीं हुआ ये बास की टाल

0: Don't yap, okay? One very confident ghetto, she stand in the day when her very grandfather howlers.
1: अरे आसमानी कबूतर, बालकनी से उतर के स्टॉल में आई, स्टॉल में वो मुझे मिले के दियो क्या खर्चा पानी खान का।
2: ए, क्या रे हाँ एरिया में आके झोलने करने का बोला ना तेरे को भाई है, मैं भाई इधर का समझ ना भाई है। ए, क्या रे भाई भाई हाँ तो भाई है तो हम भी भाई ने समझा। अभी धंधे का टाइम मेरे को जाने का आता क्या

हम। अरे भाई बैठो अपनी जगह पे बैठो। मैं कहा आप बैठे अपनी जगह पे, इसी रखे।

कवालियाँ अक्सर बहुत ही खूबसूरत होती है और बड़ा ही बड़े इनमें एक मैसेज होता है, तो आज भी मैंने आपने ये कवाली सुनी और इसके बाद आपके लिए एक और कवाली पेश करते हैं, ये सुनिए। और हमेशा की तरह ये भी शायद इतनी ही लंबी होगी कवाली और ये हो सकता है कि हमें कमर्शियल ब्रेक की तरफ ले जाए, अगर ना भी हुआ तो हमारी मुलाकात अब ब्रेक के बाद ही होगी।

जो मैं पेश कर रहा हूँ यही है शान मोहम्मद। समाज फरमाइएगा, इसमें तीन प्लॉट आते हैं। पहला यही है शान मोहम्मद, और दूसरा ये है एहसान मोहम्मद, और तीसरा सबसे आखिर में ये है फरमान मोहम्मद। समा

0: Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
17: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

ब्रेक हुई खत्म और आप तमाम को एक बार फिर कहते हैं खुश आमदेद प्रोग्राम कवाली स्पेशल में। मैं हूं फैसल याकूब सुल्तानी। अगर आपने अभी ज्वाइन किया तो आपको पता है कि आपका और हमारा साथ रहता है, हर रोज़ होता है, और ये साथ हमारा इसलिए होता है क्योंकि हम आपको मुख्तलिफ कलाम कवाली सुनाते हैं। तो अब चलते हैं जनाब अगले कलाम की तरफ।

वेलकम बैक खुश आमदेद तमाम सुनने वालों को। ये बताते चलें कि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड होता है और हो सकता है कि आप कॉल कर रहे हों, टेक्स्ट कर रहे हों, तो इस वक्त आपकी और मेरी बात नहीं हो सकती। तो कोशिश किया करें कि अगर कहीं भी आप, अगर आपको कोई ख़ास कलाम सुनना है तो आप मैसेज कर दिया करें, ताकि वो हम इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपके लिए शामिल कर लेंगे जब हम दोबारा रिकॉर्ड करवाएंगे। ब्रेक के बाद अब चलते हैं, सिलसिला जारी रखते हैं और चलते हैं अगली कवाली की तरफ। समाइन, खूबसूरत कवाली का सिलसिला जारी रहेगा और अभी हम चलते हैं, आपको सुनाते हैं एक और खूबसूरत कलाम।

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tum sun rahe ho Link FM.
2: Lizzie Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firk Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchases of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, lizziasolicitors.co.uk. Lizzie Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराए पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी
6: अंकल मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने भावे कार वे या वैन ते रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस
6: ए एमओटी वाले है किधर
7: ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE अपॉइंटमेंट नहीं कोई जरूरत नहीं अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो फोन नंबर 0786-786-2585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress-free.

0: to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राब्ता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccinations।
0: This is Link FM।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
4: My name is Shireen.
1: My name is Abdul Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: At the heart of the city, you're listening to Link FM.
16: Link FM.

0: die. On 96.7 and around the world online, this is Link FM.
1: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ

0: अलग और मुनफरिद अंदाज रंगारंग प्रोग्रामों के साथ लिंक एफएम हर लम्हा हर जगह आपके साथ साथ।
1: Across Sheffield on 96.7, around the world at linkfm.org. This is your community station, Link FM.

0: And I wonder.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
13: And the winner is
14: Your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
5: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
16: Sheffield's Link FM. On 96.7 and around the world online, this is Link FM.

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: बैठा, कब यू मारला?
1: गुड इवनिंग सर।
0: गुड इवनिंग यंगमैन, कम ऑन डांस।
1: आप लोग कल रात हमारे यहाँ खाना खाइएगा सर, मेरे पिताजी आपसे मिलना चाहते हैं।
0: काय के वास्ते है?
1: सर वो भाभी को देखना चाहते हैं।
0: काय के वास्ते है?
1: सर सर
0: हम आएगा, हम जरूर आएगा। हम अपना बेटी की खुशी के वास्ते किसी का भी दरवाजे पर माथा टेक सकता है, लेकिन खुद नहीं टेक सकता है। जानता है काय के वास्ते है?

दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता। आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ, लिंक एफएम शेफील्ड।

0: Shereen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shereen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahul.
4: My name is Rizwan Ishwak.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
17: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.

0: The latest updates from your local community. Sheffield's very own community radio station. Sheffield's Link FM.
1: हम अब्बास से बेहद प्यार करते थे, उसी प्यार से इस लड़ाई

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: राह की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: दिस इज लिंक एफएम।

0: Mahdi.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
9: You are listening to Link FM 96.7.
10: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
11: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
12: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
13: And the winner is
14: your business being heard on the radio.
15: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
16: Sheffield's very own community radio station.
17: Link FM.
1: My name is Shireen.
2: My name is Abdul Rahman.
3: My name is Sai Mudassir.
4: This is Rahul.
5: My name is Rizwan Ishwak.
6: My name is Asham.
7: My name is Azan Mudassir.
8: This is Ariba and you are listening to Link FM.
16: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
17: Link FM.
18: Aap sun rahe hain Link FM 96.7.

क्या बात है यार, इसकी क्या बात है भाई। कह रही है साजन साजन साजन तेरी दुल्हन सजाऊंगी। कौन लोग हो तुसी भाई? और ना सिर्फ दुल्हन सजाने के लिए तैयार है बल्कि साथ में गाना भी गा रही है भाई। कहां पर होते हैं ऐसे लोग भाई? अगर आपको मिले तो मुझे जरूर बताइएगा। अकील शाह, थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज। आप कह रहे हैं इस्लाम ब्रदर, वालेकुम अस्सलाम। और आप कह रहे थे कि वेटिंग फॉर योर प्रोग्राम, होप यू आर डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, हाउ आर यू अकील? एंड अफशान जी हैज़ आल्सो ज्वाइन। कह रही हैं अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह।

0: तेरी दुल्हन सजाऊंगी भाई।
1: भाई ये कह रही है, मैं नहीं कह रहा यार।
0: बड़ा हौसला है भाई इसका, बड़ा हौसला है यार, बहुत हौसला है यार, ड्रामा चल रही है। आई होप यू हैड अ ग्रेट वीकेंड एंड यू हैव एंजॉयड द हॉट वेदर।

And I hope you were not complaining, oh, it was too hot. I'm sure we all were complaining. Once again, thand program from the listeners. So, भाई है ना भाई है समझ दें कि आपके मैसेजेस की वजह से अगला ट्रैक प्ले होगा. अगर आप मैसेज नहीं करेंगे तो अगला ट्रैक नहीं प्ले होगा. ओ भाई प्ले हो जाएगा यार. नाम आपका आएगा यार. हम आपका नाम मेंशन करेंगे. मैं अपना नाम थोड़ी मेंशन करूंगा. आप बन के तितली दिल उड़ा. इस तितली को संभाल लो अकील भाई. ये एक दफा उड़ गया ना कहीं और चला गया, गलत जगह पे चला गया. अगर ये तितली नुमा दिल फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. इस दिल को भी काबू में रखो और तितली को भी काबू में. नहीं, तितली को उड़ने दो भाई. तितली का काम क्या है भाई? तितली का काम है एक फूल से दूसरे फूल की तरफ जाना. और आजकल सिर्फ तितलियां ही अवेलेबल हैं.

मोहसिन भाई थैंक यू वेरी मच फॉर योर मैसेज. आप कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, नो टाइम फॉर अ मिस कॉल. मोहसिन भाई सेड ही हैज नो टाइम फॉर अ मिस कॉल बट देन ही व्हाट्सएप मी. मैं क्या विल ही हो फिर. कलीम हैज ऑल्सो ज्वाइन, कह रहा है अस्सलाम वालेकुम. सलाम कलीम, हाउ आर यू.

0: यहाँ,
1: मैं यहाँ हूँ। What a beautiful track। मोहसिन भाई इन कह रहे हैं कि जो मिला उस्ताद मिला। मोहसिन भाई उस्तादों को उस्ताद ही मिलते हैं ना। मैं क्या तुसी कड़े बड़े सादे हो हैं। नहीं ये तो खैर मजाक था, लेकिन बस जी उस्तादों की जिंदगी है, उस्तादों का जमाना है। उस्ताद ही आजकल आपको पता है हर जगह उस्ताद हैं, एक से एक उस्ताद है। लेकिन एक दिन आएगा इन उस्तादों का भी हिसाब होगा, फिर पता चलेगा कि कौन उस्ताद है।

0: जी मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ। What a beautiful track। वीर जारा से लिया गया ये ट्रैक था। उम्मीद करते हैं आपने इस ट्रैक को एंजॉय किया होगा। लग रहा नहीं है कि आज कोई भी एंजॉय कर रहा है। ठंड प्रोग्राम है व्हाट्सएप के ऊपर। वही 5-6 मैसेजेस आए हैं, बाकी लोग बहुत बिजी हैं। मैं सोचता हूँ मैं भी घर चला जाऊँ यार। एनीवे जी, 50 सेकंड्स में वी विल बी गोइंग फॉर अ कमर्शियल ब्रेक एंड दिस इज गोइंग टू बी अवर सेकंड कमर्शियल ब्रेक। ड्यूरिंग अ ब्रेक नो, व्हाई शुड आई स्टार्ट कंपटीशन? आई नो कि मैंने कंपटीशन स्टार्ट करना है, सबने मैसेजेस करना है, फिर अपने अपने मतलब और अपने अपने वाउचर के लिए मैसेज करते हो ना। भाई की मोहब्बत में तो नहीं करते ना भाई। जब भाई को मोहब्बत नहीं शो करोगे तो मैं क्यों मोहब्बत शो करूं, यानी वाउचर क्यों शो करूं? समझा करे ना। 10 seconds, we are going for a commercial break. Don't go anywhere. I'll be right back after this break.
1: Listening to Link FM. Assalamualaikum, मैं नईम अजारवी और तुसा सुन रहे हो Link FM.
2: Lizzie's Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114-308-2727 or visit us online, liziasolicitors.co.uk. Lizia Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खलते हुए जी।
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल ही नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ये एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत, लाजवाब सर्विस।
6: एएमओटी वाले हैं किधर?
5: एएमओटी क्ले स्ट्रीट अटकलिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ तो मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585।
7: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
8: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. can you make a lasting difference in children's lives. Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
9: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
10: 96.7 Link FM.
11: You are listening to Link FM.
12: This is Adam Ali. You're listening to Link FM.
13: Hi, my name is Safa.
14: And my name is Zainab.
15: You are listening to Link FM 96.7 FM.

कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड, द वॉइस ऑफ द कम्युनिटीज, 96.7 लिंक एफएम,
2: लिंक एफएम।
3: जहां दिल मिलते हैं, जहां बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल,
0: जहां बातें बनते हैं, वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
4: लिंक एफएम

हमारा और आपका साथ रहेगा शाम के 6 बजे तक, और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलसिला अच्छा लगता होगा। प्रोग्राम के इस हिस्से में भी कुछ बहुत अच्छा, बहुत नाइस ट्रैक्स आपके लिए लगाएंगे, उम्मीद करेंगे आप पसंद करेंगे। साथ देते रहिएगा, हम हैं आपके साथ और आप हमारे साथ।

0: Sheffield's Link FM. Oh.
1: ये दिल जो तेरे नाम से धड़के, वो कोई खता नहीं, इबादत है जो तू दिल में ही बसा रहे, तो यही मेरी जन्नत है।
2: अकील भाई सॉरी, आपका सॉन्ग जो है वो तितली तितली तितली को मैंने गाना, तितली को छोड़ दें यार, और दिल को भी काबू में रखें मेरे भाई। जुनेद, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, फजूल की एक्यूजेशन करने कर रही हो मुझ पर, फजूल बगैर सबूत के बात कर रही हो, बगैर सबूत के। सबूत सबूत लाओ मेरे लिए, सबूत। सुनना, 10 मिनट का प्रोग्राम हो रहा है और भाषण इस तरह लंबे लंबे दे रही होती हो यार।

देखें जब मैं बात सच्ची है, जब मैं बातें कम करता हूं तो आप लोगों को ये बात या कंप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है कि मैं बातें कम कर रहा हूं। जब मैसेज आते हैं 2 घंटे के प्रोग्राम में, तो उसके बाद यार हमसे भाई, हम सब प्रेजेंटर से आप बहुत एक्सपेक्ट करते हो, ये भी करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे ना करो, ऐसे करो, एंड हम आपसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि पूरा प्रोग्राम सुनो 2 घंटे का। अब ये 7 क्या, अभी मैं आपको बताता हूँ इसके, ये बहुत बड़े भाषण दे रहा है ना, 5:20 पे इसने कहा अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, वे वर यू फ्रॉम 4 o'clock टिल 5:20? किधर थे आप बताएं जरा, मैनू दसो, फिर गल कर गया है। और इस पूरे शहर में क्रॉस साउथ यॉर्कशायर, यू आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन, इंक्लूड ऑल द टैक्सी ड्राइवर्स, खवातीन जो हमारी बहनें बाहर ड्राइव कर रही हैं, पिकअप ड्रॉप कर रही हैं, लोग काम ख़त्म करके घर की तरफ जा रहे हैं, अगर इन सब को एक एक बंदे को काउंट किया जाए, तो आर यू सेइंग कि 500 पीपल, आई एम नॉट आस्किंग फॉर 5,000, आर यू सेइंग दैट 500 पीपल आर नॉट लिसनिंग अक्रॉस साउथ यॉर्कशायर? आई डोंट थिंक सो। So just imagine for the sake of argument only 500 people, which I don't think so, but चलो मान लेते हैं कि अगर 500 सुन रहे हैं, तो 500 में अगर 10 लोग मुझे मैसेज करते हैं, so आप इसकी परसेंटेज निकाल लें। The question is, जो बाकी हैं वो कहां पर हैं? 500 में से अगर 10 करते हैं तो 490 people वो बार मिलके मुझे क्यों कहते हैं प्रोग्राम सुने सा बहुत मजे का सा, दसो मैनू, मैं क्या कि मैं मंजी कि थे मामा।

This is Link FM 96.7 FM. I'm your host Jawad Janjua. And this is Drive Time Show. Drive Time Show, Monday till Thursday, 4 till 6 on your favorite radio station, Link FM. एक झलक को भाई अपनी एक झलक तुझे नहीं दिखा रही छोड़ जा दिखला जा ये वाला गाना कर देना मेरे गार्डन में क्या भाई कुछ समझ नहीं आया मुझे नो जुनेद इट्स अनएक्सेप्टेबल फ्रॉम टुमारो आई एम नॉट गोइंग टू रीड योर मैसेज आई एम ओनली गोइंग टू रीड योर मैसेज इफ यू मैसेज मी एट 403 तीन मिनट में आपको रियायती नंबर देके पास कर रहा हूं वो याद है ना पाकिस्तान में 33 नंबर वाला पास होता है तो वो 33 नंबर दे रहा हूं मैं अगर 403 पे आपने मुझे मैसेज किया और कहा अस्सलाम वालेकुम आई एम लिसनिंग देन आई विल रीड योर मैसेजेस वरना कल के बाद मेरे जो वो लिसनर जो मुझे मैसेज नहीं करते उनकी तादाद 491 हो जाएगी क्योंकि 10 ही करते हैं 10-15 30 करते हैं जब कंपटीशन होता है वैसे 10 ही करते होंगे मैक्स तो एक आप कम हो जाएंगे तो 491 लोग यार क्या पूरे शहर पूरे यानी साउथ यॉर्कशायर में 491 500 लोग नो यार आई एम श्योर इट्स मोर देन दैट भाई भाई मैं क्या करूं यार मेरे काम में मैं आपके काम के बारे में क्यों सोचूं दसो मैनू

नहीं सोचना, मैं बता रहा हूँ, अगर ये ट्रैक 2026 का है तो उसने तेरी चाहत के बारे में नहीं सोचना मेरे भाई। तू क्या सोच रहा, कुछ रखने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो बोलेंगे बोल क्यों रहा है। I was unable to play your favorite track. मैं आपका ट्रैक जरूर लगाऊंगा यार, आप आई होप कि आप नाराज नहीं हुए होंगे। ओके जी, टाइम शो अजीज, अगर जिंदगी रही

0: If you would like to promote your business on our radio station, contact on 0114 261 8182 or email us on info@linkfm.org.
1: From Sheffield to the world, this is Link FM, your community radio station.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट, टेक अवे, दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is...
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
5: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.
15: 96.7 Link FM.
16: Link FM.

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम शेफील्ड।
2: शेफील्ड्स लिंक एफएम,
0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
1: लिंक एफएम।

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
2: और हर सूर
1: दिल को छो जाए,
3: वही है लिंक एफएम।
1: दिल से आपके साथ
3: लिंक एफएम।

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
2: Link FM Sheffield.
3: हर धड़कन की आवाज है Link FM, मोहब्बत भरा अंदाज है Link FM,
4: सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है Link FM,
5: दिल से आपके साथ,
2: Link FM

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम
1: शेफील्ड। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं थोड़ा इफ्तिखार ठाकुर पे बोलना, तो तुसी सुनने हो पे लिंक एफएम 96.7। बहुत मजा है सीने।
2: Music, community, conversation, and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7

0: The future is already here. We play your favourite music every day. 96.7
1: Link FM.
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ
3: लिंक FM Sheffield।
2: हर धड़कन की आवाज है लिंक FM, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक FM, सुबह की रोशनी शाम की महफिल हर दिल का राज है लिंक FM, दिल से आपके साथ
3: लिंक FM।

0: Link FM for the latest local, national and international news. Link FM, Sheffield.
1: बच्चों की हिफाजती वैक्सीन आपके बच्चों को बेहतरीन तहफ्फुज़ फराहम करती हैं और हर साल इंग्लैंड में 5,000 से ज़ायद अमवात को रोकने में मददगार साबित होती हैं। बचपन की बीमारियां, संगीन अमराज, अस्पताल में दाखिले और उम्र भर की माजूरी का बाइस बन सकती हैं। खसरा और काली खांसी जैसी बचपन की बीमारियां अब भी मौजूद हैं और हमारी कम्युनिटीज में तेजी से फैलती हैं। अगर आपके बच्चे को वैक्सीन नहीं लगी तो वो महफूज नहीं। NHS की जानिब से फराहम की जाने वाली तमाम बचपन की वैक्सीन दुनिया भर में लाखों बच्चों को दी गई हैं और उनका हिफाजती रिकॉर्ड बेहतरीन है। बेहतरीन तहफ्फुज़ के लिए वैक्सीन वक्त पर लगवाना निहायत जरूरी है, लेकिन अगर आपके बच्चे की कोई वैक्सीन रह गई है तो अपने GP डॉक्टर से राबता करके उसे मुकम्मल करवाएं। क्या आपके बच्चे की वैक्सीन वक्त पर लग चुकी है? उनकी रेड बुक चेक करें या उनके GP से बात करें। मजीद मालूमात के लिए विजिट करें nhs.uk/childhoodvaccination।
2: Music, community, conversation and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week. This is Link FM. Link FM.
3: जहाँ दिल मिलते हैं, जहाँ बातें बनते हैं, हर राह की मंजिल,
4: जहाँ बातें बनते हैं, वही है लिंक FM। दिल से आपके साथ
5: लिंक FM Sheffield।
6: जहाँ हर लफ्ज दिल से निकले
7: और हर सूर दिल को छो जाए,
5: वही है लिंक FM।
4: दिल से आपके साथ
5: लिंक FM Sheffield।
8: To make a difference in your community, join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
9: सुनिए सुनिए सुनिए, पार्ल बेकर्स ने शेफील्ड में धूम मचा दी, यानी रंगारंग मिठाइयों की दुकान सजा दी। गुलाब जामुन, लड्डू, रसमलाई, फलूदा, हलवा, पूरी,
10: समोसा, चाट, नमक पारे, जलेबी, गाजर हलवा, हर किस्म की केक और मिठाई जो सबको पसंद आई।
9: लजीज चिकन पेस्ट्री, लैम पेस्ट्री, सैंडविच, चिकन पनीनी, दही बल्ले और किबाब, सब कुछ ही लाजवाब। पार्ल बेकर्स, 640 Stanyford Road, शेफील्ड, S94LP, टेलीफोन 01142 966092। पार्ल बेकर्स।
11: Getting married or know someone who is? Make your big day unforgettable with Diamond Wedding Services. From breathtaking floral decor to elegant stages, centerpieces and stunning walkways, we design every detail to perfection. However you imagine your dream wedding, our team can bring it to life. So relax, celebrate and let Diamond Wedding Services handle the magic. Call 077-680-47693 and follow us on Instagram and TikTok at Diamond Wedding Services. Your dream, beautifully designed.
12: Listening to Link FM.
0: Sheffield's very own community radio station.
13: Link FM.
14: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ
5: Link FM Sheffield.

0: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: Linking communities, thinking positive. This is your local community radio station, Sheffield's Link FM.
2: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.

0: My name is Shree.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
8: You are listening to Link FM 96.7.
9: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
10: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
11: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज़ायद तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
12: And the winner is
13: Your business being heard on the radio.
14: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
15: Sheffield's very own community radio station.
16: Link FM.
0: My name is Shireen.
1: My name is Abed Rahman.
2: My name is Sai Mudassir.
3: This is Rahan.
4: My name is Rizwan Ishraq.
5: My name is Asham.
6: My name is Azan Mudassir.
7: This is Ariba and you are listening to Link FM.
15: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
16: Link FM.

0: Keep listening to Link FM for the latest local, national and international news. Link FM.
1: Sheffield.
2: Music, community, conversation and positive vibes. This is Link FM, broadcasting 24 hours a day, 7 days a week.
3: This is Link FM. Link FM.
4: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

0: धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम शेफील्ड।
1: आप सुन रहे हैं लिंक एफएम 96.7।

0: राह की मंजिल
1: जहां बातें बनते हैं वही है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ
2: लिंक एफएम शेफील्ड।
3: कुक स्टूडियो सीजन 15।

0: Wherever you go, Link FM is there for you. Download our app, Link FM 967, or simply search Link FM Live on Google.
1: दिल से दिल को मिलाता, हर रंग हर आवाज को सजाता, आपका अपना रेडियो स्टेशन, दिल से आपके साथ,
2: Link FM Sheffield.

0: are listening to Link FM.
1: Assalamu alaikum, main hoon Naeem Azharvi aur tusan sun rahe ho Link FM.
2: Mazir Solicitors is one of the established law firms in Sheffield, Firth Park. We provide quality, dedicated legal services to include residential and commercial conveyancing, wills and probate, power of attorneys, sale and purchase of businesses, commercial leases, immigration and estate planning, multilingual staff, competitive prices. Please call us on 0114 308 2727 or visit us online, naziersolicitors.co.uk. Nazir Solicitors is trading style of affinity, 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
3: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक 2000 पाउंड तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0330571009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन, फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
4: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
5: परेशान खुलते हुए जी
6: अंकल, मेरी कार की एमओटी एक्सपायर हो रही है, कौन सा एमओटी सेंटर लेके जाऊं?
5: ये तो कोई फिक्र वाली गल नहीं, ऐ साडे पापा गुलाम कादर हो रहे ना, ए एमओटी वाले वो हर किस्म ने गड़ियां नहीं एमओटी करने, भावे कार वे या वैन, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री करने, खुश अखलाक शख्सियत ते लाजवाब सर्विस।
6: ए एमओटी वाले हैं किधर?
7: ए एमओटी क्ले स्ट्रीट अटरक्लिफ S92PE। अपॉइंटमेंट नहीं, कोई जरूरत नहीं, अच्छो एमओटी गड्डी नहीं कराओ ते मौजा करो। फोन नंबर 0786-786-2585.
8: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
9: $55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
10: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
11: 96.7 Link FM.
0: You are listening to Link FM.
11: This is Link FM.
12: You're listening to Link FM on 96.7 FM. Linking communities, thinking positive across South Yorkshire.
13: हर धड़कन की आवाज है लिंक एफएम, मोहब्बत भरा अंदाज है लिंक एफएम, सुबह की रोशनी, शाम की महफिल, हर दिल का राज है लिंक एफएम, दिल से आपके साथ लिंक एफएम।

के पोटली में तेरी हो आगना संभल के रात के मुसाफिर तू भागना संभल के पोटली में तेरी हो आगना संभल के रात के मुसाफिर।

खोज ले तू, मकान खोज ले तू, इंसान के शहर में इंसान खोज ले तू। देख तेरी ठोकर से राह का वो पत्थर

तूने भी किया है, इन्होंने भी किया है, उन्होंने भी किया है, माना कि तूने हाँ हाँ चाहा नहीं था, लेकिन तू जानता नहीं कि ये कैसे हो गया है, लेकिन तू

0: Dorfman.
1: My name is Saim Mudassir.
2: This is Rohan.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
7: You are listening to Link FM 96.7.
8: Are you a taxi or private hire driver in Rotherham or Sheffield? Have you been involved in an accident? The claim team on Kimberworth Road, Rotherham is here to help you. We pay a £2,000 referral fee for non-fault taxi claims. Call us today on 0330 057 1009. That's 0330 057 1009. The claim team is here to help you get back on the road. Terms and conditions apply.
9: iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. अगर आपको रेस्टोरेंट टेक अवे दुकानों और तमाम कमर्शियल फ्रिज फ्रीजर कोल्ड रूम और एयर कंडीशन की सर्विस और रिपेयरिंग की जरूरत है तो iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning की तजुर्बाकार टीम आपके लिए हाजिर है. iTech Commercial Refrigeration and Air Conditioning. Contact number 07955198814 and 07955198824.
10: क्या आप किसी तकरीब का एहतमाम कर रहे हैं? शादी, मेहंदी, मिलाद शरीफ या खत्मे कुरान, छोटी महफिल हो या बड़ा इज्तिमा, याद रखें, शाहिद केटरिंग सर्विस 30 साल से ज्यादा तजर्बे के साथ हम 30 से 5000 अफराद तक की तकरीबात के लिए मियारी और लजीज खाने का बेहतरीन इंतजाम करते हैं. हमारे यहाँ प्रोफेशनल केटरिंग स्टाफ सर्विस भी दस्तयाब है ताकि आप बेफिक्र होकर अपनी तकरीब एंजॉय करें. बेहतरीन मियार, जायका और बाएतमाद सर्विस, यही हमारी पहचान है. राबता करें 07796510422 या विजिट करें शाहिद केटरिंग सर्विस, पाकिस्तान मुस्लिम सेंटर, शेफील्ड. आपकी खुशियों का बेहतरीन इंतखाब.
11: And the winner is
12: your business being heard on the radio.
13: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Link FM. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed, so find out more today. For details, click on linkfm.org or WhatsApp 07939 849 339.
14: Sheffield's very own community radio station.
15: Link FM.
16: My name is Shireen.
17: My name is Abed Rahman.
1: My name is Saim Mudassir.
4: This is Rohan.
3: My name is Rizwan Ishraq.
4: My name is Asham.
5: My name is Azan Mudassir.
6: This is Ariba and you are listening to Link FM.
14: Anywhere you go, Link FM is always there with you. Listen online at linkfm.org.
15: Link FM.

0: और तुसा सुन रहे हो लिंक एफएम।
1: From residential and commercial conveyancing to wills, probate and immigration matters, we've got you covered. We have multilingual staff to support you and amazing feedback, busier solicitors, legal expertise you can trust. Visit us at 61 Billhouse Road, Sheffield, or call 0114 308 2727. Mazeus Solicitors is trading style of Affinity 7 Law Solicitors, regulated by Solicitors Regulation Authority.
2: अगर आपकी टैक्सी, मिनी कैब, प्राइवेट किराया पर लेने वाली गाड़ी या प्रेस्टीज कार हादसे का शिकार हुई है, आपको क्लेम टीम से बात करने की जरूरत है। वह मुकामी माहिरीन जो शेफील्ड और आसपास के इलाकों में मुतबादिल गाड़ी तेजी से मुहैया कर सकते हैं। क्लेम टीम अपने दावे के मुताबिक £2,000 तक रेफरल फीस अदा करते हैं। 0333-00571-009 पर कॉल करें। क्लेम टीम रोदरहम को ऑनलाइन फेसबुक या theclaimteam.uk पर तलाश करें।
3: Do you want to make a difference in your community? Join the Interfaith Network in South Yorkshire and help raise awareness about early onset type 2 diabetes in young people aged 18 to 39. Diabetes affects millions across the UK, with ethnic minority groups often at higher risk. The NHS South Yorkshire Integrated Care Board and the Pakistan Muslim Centre in Sheffield have started the T2Day project, bringing together different faiths and cultures to fight diabetes. We're running awareness campaigns, hosting health workshops, and creating online platforms to give communities easy access to helpful resources. From community events to interfaith networking, your involvement can really make a difference. Interested in being part of this important work? Contact PMC today. Call 0114 243 6091. Let's work together to build healthier communities.
4: खुश इखलाक अमला लाजवाब सर्विस AAMOT। अगर आपने अभी तक अपनी गाड़ी की MOT नहीं करवाई या आपकी गाड़ी की MOT एक्सपायर हो चुकी है तो कहीं और जाने या परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हर किस्म की गाड़ियों की MOT का काबिल एतमाद सेंटर, रीटेस्ट बिल्कुल फ्री। AAMOT क्ले स्ट्रीट अटकलीफ शेफील्ड S9 2VE। गुलाम कादर साहब से अभी राब्ता करें। कॉन्टेक्ट नंबर 0786-786-2585।
5: Need a taxi or HGV medical fast? FA Driving Medicals make it simple. Taxi and Group 2 medicals with eye tests carried out by a GMC registered doctor based at Attercliffe Pharmacy Direct, Sheffield. For just £40, don't delay. Call 07456-848-368. That's 07456-848-368. Or visit fadrivingmedicals.co.uk. Quick and stress free.
6: 55 million face hunger in West and Central Africa, including malnourished children. Can you make a lasting difference in children's lives? Together with the plight of the children of Gaza, let's become a beacon of hope in their time of sheer need. Call the donation hotline now on 0114-365-4454 or visit familiesrelief.org.uk and let's save lives together.
7: For the latest updates, follow us on facebook.com/linkfm96.7.
8: 96.7 Link FM.
9: You are listening to Link FM.